0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे ज़हनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत रियाज, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायरेक्टर NIDE कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा डायबिटीज खवातीन में कबल अज वक्त मेनोपॉज का सबब कैसे बनती है। जुमेरात 8 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन FM 247 365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन, खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना, शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।

0: 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
0: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
0: एंड
4: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
0: एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
1: एंड
3: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं
1: एंड
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: and
1: Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
2: Pakistan humse hai, hum acche to Pakistan acha. To aao ehd karein ki jaisa Pakistan hum dekhna chahte hain, वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान.
3: मुफाद-ए-आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM 247.
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं.
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं.
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझें.
6: आइए वेट से आगे का सोचें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: 100 FM।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: एंड
7: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
2: एंड
8: AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल को है आराम।
2: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
2: एंड
3: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
2: FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
10: 247-365.

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
0: एंड
2: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
0: एंड
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
0: एंड
4: AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल को है आराम
0: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
6: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, The Premier Islamic Bank.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery Hato.
2: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: पर एतबार नो पानी नो परेशानी।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: टपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
5: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
6: This program is brought to you by
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
4: एंड टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
3: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। एंड

0: 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dilko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
4: Kapal Family Mixture ke saath har safar khas. Umrah likhe 02111182725 par WhatsApp karein. Pack ke andar maujood code bataein aur lucky draw mein shamil ho jaein. Kapal Family Mixture laein, umrah par jaein.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
5: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. 365.

0: your location for maximum music.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें. अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है. अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें. जरूरत के तहत मुतलका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है.
8: اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
9: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
10: facebook.com/fm247365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil to hai ara.
2: नया पॉन्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. 365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूले हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स।
2: प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत रियाज, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायरेक्टर NIDE कराची, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा डायबिटीज खवातीन में कबले अज वक्त मेनोपॉज का सबब कैसे बनती है। जुमेरात 8 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
3: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: Back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM.

0: सागर
1: FM 100 टाइम चेक इट्स 12 नून FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
2: FM 100
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? क्या हाल है आप सबके? कैसा गुजर रहा है दिन? क्या कर लिया है? क्या करने वाले हैं? तो जी होंगी आपसे खूब सारी बातें शेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक. तो चलिए जी करते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से जो आगाज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. सो लेट्स बिगिन.

हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक. हम आ चुके हैं वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान. और मैंने कहा कि जबकि हम वापस आ ही चुके हैं तो क्यों ना आपको एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करते चलें जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है. तो मैंने सोचा कि चलो जी अपने लिसनर्स को भी इस बारे में बताते हैं. हर बिजनेस ओनर की जरूरत एक ऐसा अकाउंट जो दे सहूलत भी और आजादी भी. आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदे उठाएं मुफ्त बैंकिंग सहूलियात का. कारोबारी अदायगी हो या रोजमर्रा ट्रांजेक्शन, एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ हर काम अब होगा ज्यादा आसान और ज्यादा स्मार्ट. तो जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि अब आपकी जिंदगानी में हो ज्यादा आसानी और ज्यादा स्मार्ट फैसले तो आपने भी खुलवा लेना है एचबीएल फ्रीडम अकाउंट.

जी मेरे दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ वापस और भाई मैसेजेस आ चुके हैं। तो लुकवर्ल्ड कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माय लवली लिसनर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। कहती हैं, मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ, दिमाग ज्यादा यूज नहीं करती। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, इतना ऑनेस्ट रिप्लाई दिया है भाई। लोकपाल कहती हैं कि वो अपने दिमाग का कम ही इस्तेमाल करती है। ठीक है जी, ये कह रही है कि जब जरूरत नहीं है तो मैं क्यों इस्तेमाल करूं, तो ये अपने दिल की सुनती है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं। ऐसा लग रहा है कि नज़ला मुझे हो गया, पर नज़ला ना ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहा है कि वो हो गया है, तो इस वजह से मैं थोड़ी परेशान हूं। चाह रही हूं कि नज़ला जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि वो आ गया है, लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो ये वाला मसला हो गया है। ऑलराइट जी, कहते हैं कि आई एम गुड, ऑफिस से सुन रहे हैं, कह रहे हैं दिन भी अच्छा गुजर रहा है, लंच में कलेजी है, आपके लंच में, आपका 2 डेज लंच है, बिल्कुल सही बात है, मेरे कल के लंच में था बन कबाब और आज के लंच में है बिरयानी मसाले वाली, तो आज बिरयानी में खाने वाली हूँ, बिरयानी आलू वाली बिरयानी आज मैं खाने वाली हूँ अपने लंच में। तो कल का लंच ही हो गया, आज का भी होता है। कहते हैं आज तो ट्रैक शामिल हो जाए, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा। ठीक है जी, कहते हैं कि मैं अपने दिल की ज्यादा सुनता हूँ, दिल की सुनता हूँ ज्यादा 60% ही अपने दिल की दिमाग की सुनते हैं। अच्छा नहीं, दिल की ज्यादा सुनते हैं और उसके बाद भी दिल की 60, अच्छा ओके ओके, दिल की 60% सुनते हैं, दिमाग की 40% सुनते हैं। ओके, कहते हैं जब किसी बात की कमेंट्री कर लो तो फिर मैं अपने आप की भी, ओ हो जबरदस्त हो गया भाई। रशीद खान ने कह दिया कि मैं जिस बात की कमिटमेंट कर लूं उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। वाह वाह वाह, फुल ऑन जो है वो स्पेक के साथ रशीद खान ने कह दिया कि जब वो जिस बात की कमिटमेंट कर लेते हैं उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते हैं, तो क्या कहने हैं भाई, जबरदस्त हो गया है। और रशीद खान कह रहे हैं कि जी ट्रैक लगा दें और हम इसे शामिल कर लेते हैं। चलो जी, अब इतना आप रिक्वेस्ट करो तो हम शामिल करते हैं, क्योंकि कल भी शायद हमने रशीद खान का ट्रैक शामिल नहीं किया था और ये तो रशीद खान का मोस्ट फेवरेट तरीन ट्रैक हो चुका है और ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी तौर पर बनता है। तो कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जब वो मेरे शो में चले ना, तो आप समझ जाइएगा कि हमारे लिसनर्स ही हैं जो इस ट्रैक को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, तो हम इसे शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो एंजॉय, वापस आकर करते हैं आपके मजीद मैसेज को शामिल।

यस मेरे दोस्तों, तो आ चुके हैं हम वापस और दिल और दिमाग के बारे में हो रही है बात इस वक्त मेरे प्रोग्राम में कि भाई आप अपने दिल की सुनते हैं या फिर आप अपने दिमाग की सुनते हैं। अब किसकी सुनते हैं सबसे ज्यादा, भाई दिल की या फिर अपने दिमाग की? और आपको क्या लगता है कि दोनों आपको सही मशवरे दे रहा होता है या कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं आप दिल की सुन लेते तो शायद फायदा होता है या कभी कभी दिमाग की सुन लेते हैं? मतलब ऐसा भी होता है ना कि समटाइम्स हम कोई डिसीजन ले लेते हैं और उसके कुछ टाइम बाद अगर वो फैसला सही नहीं होता तो आप सोच रहे होते हैं यार काश मैंने अपने दिमाग की सुन ली होती। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यहां पर हम दिल और दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं कि आप ज्यादा किसकी सुनते हैं, लेकिन अक्सर औकात आप अपने दिल और दिमाग को छोड़कर दूसरों की सुनते हैं और दूसरों के बारे में सोचकर भी फैसले कर रहे होते हैं जो कि गलत डिसीजन होता है। लाइक वो दूसरे यानी कि आपके बहन भाई, आपके घर वाले, वो तो आपको सही मशवरा देंगे, लेकिन जो हम एक ये प्रेशर में आ जाते हैं ना सोसाइटी के कि यार वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे ऑफिस में, तो इस चक्कर में भी ना हम अक्सर अवकात गलत फैसले कर लेते हैं। तो अपनों की सुने जरूर, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अपने करियर को या अपनी चीजों को मत मुतासर करें, ये एक गलत फैसला हो सकता है। तो ये टेंशन जो हमें अक्सर औकात रहती है ना कि यार लोग क्या कहेंगे, तो यार ये बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम बस खुद नहीं फैसला कर पाते कि हमारे लिए जो है वो सही क्या है क्या गलत है, बिकॉज हमें एक टेंशन में आ जाते हैं कि यार हम ये फैसला करें नहीं करें। सो मेक श्योर कि ऐसा फैसला ना करें जिसकी वजह से आप जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं या अपने दिमाग की, लेकिन सुने उसकी जो आपको हमेशा अच्छा मशवरा देता है, वो मशवरा जो आपके हमेशा काम आता है। सो क्या कहूं मैं, कीप लिस्निंग टू योर हार्ट और कीप लिस्निंग योर ब्रेन। सुन सकते हैं आप दोनों की, सुन सकते हैं अपने दिल की भी, सुन सकते हैं अपने दिमाग की भी, सुन सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आपको सही ज्यादा अच्छे मशवरे कौन देता है ये भी आप हमें जरूर बताएं, आपका दिल देता है कि दिमाग देता है, क्योंकि इसी पर हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जाएंगे भी एक अदर ट्रैक की जानिब भी। ये प्लान हमारा ये था कि हम ब्रेक के बाद जो है वो ट्रैक के साथ वापस आए, मैंने कहा नहीं जी बात कर लेते हैं क्योंकि दिल और दिमाग दोनों के दरमियान आज चल रही है गुफ्तगू, तो क्यों ना जाना जाए अपने लिस्नर से कि आप सबसे ज्यादा सुनते हैं किसकी। तो ट्रैक के बाद आते हैं वापस, आपने कहीं नहीं जाना है, वी विल बी राइट बैक।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365 You're in tune with the lunchtime special on the big one, fm 100.
4: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

0: ओके, सो ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे। जरीन नूर का भी साथ ही साथ हमारे पास मैसेज आ चुका है, कहती हैं सलाम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूं जी मैं, आप बताओ आप कैसी हो। कहती हैं आज खाने में दाल गोश्त बॉयल चावल हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये जो चने की दाल गोश्त होता है या एक जिसे दाल जो बनती है भुनी मूंग मसूर की है, वो भी ना चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। और कल मैंने इस कॉम्बिनेशन को खाया था, मुझे बहुत मजे की लगी थी कल, जैसे भुनी दाल और साथ में बॉयल चावल। और कल मैंने, मजे की बात यह कि कल जो मैंने चावल बनाए थे वो मैंने बनाने तो चावल चाहे थे लेकिन वो बन सुशी जैसे गए थे, तो मुझे बड़ी एम्बेरसिंग मोमेंट रहा कल रात में मेरे लिए जब मैंने चावल को बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझसे चावल नहीं बनते, विच इज वेरी सैड। मैंने जब बनाए तो वो बिल्कुल सूची जैसी शक्ल उन्होंने अख्तियार कर ली, लेकिन वो वैसे वाले चावल और भुनी दाल लग बहुत मजे की रही थी। और वही वाली बात है, जब आप खुद बनाते हैं तो आपको वैसे ही वो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो भुनी दाल भी अगर आप चावलों के साथ खाएं बॉयल्ड राइस के साथ तो वो मजे की लगती है। तो कल ये रहा मेरा एक एक्सपीरियंस चावलों का, तो मैंने कहा चलो ये भी बताते चलते हैं। और हमारे पास मैसेज आया है आयशा का, आयशा कहती हैं सलाम क्या हाल हैं। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहती हैं आज लंच में पास्ता है चिकन वाला, दैट्स ग्रेट। चिकन वाला पास्ता हो या विदाउट चिकन हो, पास्ता तो भाई पास्ता होता है जो कि हर हाल में आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, मजे का। अच्छा भाई जरीनूर, कल तो आपने हमें बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए थे, तो मजीद शेर भी आप हमें सुनाएं मजे मजे के, क्योंकि कल आपके शेर सुन के बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने। आज आप हमें हमारे सवाल का जवाब दें भाई। आज हमने सवाल ये पूछा है कि आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की फैसला करते वक्त, तो आप किसकी सुनती हैं जरीनूर, हमें जरूर बताएं। और बाकी लिसनर्स के लिए भी ये सवाल है, और इसका जवाब देने के लिए आप जो है वो हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। साथ ही साथ आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने स्टेटस कर दिया है अपडेट। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस, तो आप जल्दी से मैसेज करें और अपने बारे में हमें बताएं कि आप सुनते ज्यादा किसकी हैं, अपने दिल की या दिमाग की, और किसकी कहने पर आप फैसले ज्यादा करते हैं, किसकी कहने पर करते हैं भाई हमें बताएं। या अगर कोई शख्स भी है जिसके कहने पर आप फैसले करते हैं उसका भी नाम बता सकते हैं। जैसे यार मैं भी अपनी बहन के फैसलों पर बड़ा एतमाद करती हूं और इंतजार करती हूं कि वो बोले तो मैं वैसा काम करूं, तो दिल और दिमाग से पहले मुझे लगता है कि अक्सर औकात मेरे सामने मेरी बहन आ जाती है, मैं कहती हूं वो जो कहेगी ना मैं वो करूंगी। तो दिल और दिमाग के साथ साथ कोई ना कोई शख्स भी वैल्यू रखता है जिसके फैसलों का आप इंतजार करते हैं या उसके सजेशन का वेट करते हैं, तो वो कौन है ये भी आप हमें बता सकते हैं। चलते हैं ब्रेक की जानिब, आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: This program is brought to you by Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, इफ़े तू है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सकून सा है तू, तेरी खुशबू लिबास में मेरे और कमरे में रखी तेरी शर्ट जस्ट इन केस शाम।

Hello, hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So guys, today is Thursday and 8th of October 2026. Aap sun rahe hain hamara show jiska naam hai Genie in a Radio. So it's a request based show. Aap log request kar sakte hain for your favorite tracks and तरीके कार बहुत ही आसान है. जस्ट टाइप के चाहे देन लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और उसे 3-6-3-6 पर भेजना है. मेक श्योर जब आप हमें मैसेज करेंगे तो आपने जो गाना सुना है उसका नाम लिखना है और साथ में सिंगर का नाम लिख के 3-6-3-6 पर भेज दें. साथ में आप लोगों को बताते चलें कि आप अगर 3-6 पे मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे पेज पे जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं, विच इज facebook.com/rj.jasmine. So right now we are moving on towards the first track of the show. Milte hain aapse is gaane ke baad. Hamare saath rahega.

Alrighty, everyone, welcome back. So, हमारे पास बिलाल का मैसेज आया है एंड बिलाल हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ओएसटी ऑफ दरे निजात. ओके बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड निदा हैज टेक्स्टेड एंड निदा ने भी रिक्वेस्ट किया है दिल बेचारा फ्रॉम आग लगे बस्ती इस मूवी से. ठीक है, जरूर प्ले कर देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल टेक्स्ट सेंडर्स आउट देयर. और अभी जो है वो शो को वाइंड अप करेंगे. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे. सुनना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. facebook.com/orger.jasmine पे आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं. आज शो हम थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं. You can also follow us on Instagram by the name of jasmine_ahmed. So guys, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज़.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: Your location for maximum music.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
2: 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by
3: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
1: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab Wahan HBL,
0: and
4: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
0: FM 100, like us on Facebook.com/FM247365. 365.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai
2: aaram 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99% 100 FM
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: This program is brought to you by
2: Tabal Family Mixture Line, Umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: 100 FM
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
7: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jai
6: and HBL Freedom Account, Jahan Khab, Vahan HBL.

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपना कुछ तीन बार मौत देखे
2: टाइम से ऐसे कि मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सा रूम मारिया, सब टूटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: facebook.com/fm247365 FM247365

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99% 100 FM
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
8: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।

0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: 91.1 FM. Your location for maximum music.
1: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
3: 11.9% 11.9%.
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99% 100 FM।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
9: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड, बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
3: किसने कहा था पैसे बचा,
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या हो का
5: चलेगी नहीं दौड़ेगी,
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: This program is brought to you by
7: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
1: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.

0: living on the FM dial.
1: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: 11.9% 11.9%.
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
1: 11.99% 100 FM HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: 100 FM
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: This program is brought to you by
8: Tabal Family Mixture Line, Umrah par jaye
1: and HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by
1: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
0: and HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. And
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? 24 सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और 24 सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
9: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियत। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
10: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड, बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट,
7: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है,
4: पेपाक है
2: तो ऐड टू कार्ड है,
4: पेपाक है
5: स्टोर ऑनलाइन एन ATM हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
6: This program is brought to you by
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
8: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
9: एंड AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल तो है आराम।
10: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
11: FM247365
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to tumko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to tumko hai aaram.
2: 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
0: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 247 365 FM 247 365

0: पेपाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है,
4: पेपाक है
2: तो ऐड टू कार्ड है,
4: पेपाक है
5: स्टोर ऑनलाइन एंड ATM हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
6: This program is brought to you by
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
8: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
9: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
12: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे, तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इत्तला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
15: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
16: like us on facebook.com/FM247365.
17: FM247365.
18: This is your music. Oh, chhad fikran nu piche, suno mere fikron mein.

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मेट ऑल हैपन।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है,
4: पेपाक है
2: तो ऐड टू कार्ट है,
4: पेपाक है
5: स्टोर ऑनलाइन एनएटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
6: This program is brought to you by
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
8: FM 24/7 365 FM 100
9: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
10: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
11: इवनिंग ड्राइव टाइम।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: Paybuck. आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: पेपा कार्ड है
3: तो फायदा है।

0: फायदा दे। This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
0: This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिले गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: You're listening to the greatest radio station.

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: 100 FM।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है,
4: पेपा है
2: तो ऐड टू कार्ड है,
4: पेपा है
1: स्टोर ऑनलाइन NATM हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे। This program is brought to you by
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
1: This public service message is brought to you by FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए, ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
6: facebook.com/fm247365
7: Evening Drive Time.

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM247365.
4: Active, yummy, adorable, zabardast. Se da kare crush on you. Ye pyaas to suno yaar.

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 36361। और सलाम, कैसे तबीयत कैसी, सबको सलाम वालेकुम। सलाम जरी नूर का भी मैसेज आ गया। इसके अलावा बिलावल गिजरी से याज भाई, आपको सुम्बल जी को, कादिर भाई और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। हाल अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। बिलावल भाई आप बताएं, तबीयत कैसी है, मजे में है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जनाब, संजीदा आ गई है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कर दिया है। बुरी निगाह हसद करने वालों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कितनी अच्छी दुआएं करती हैं आप, सीरियसली। शहजादे तबीयत कैसी, काफी बेहतर है, अब एनर्जी भी थोड़ी सी तरह। और कह रही मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। चले यार, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, आपको भी। और बारिश का ना होना हमारे अमाल है, ये बात अच्छी क्या। लेकिन यार अच्छे लोग भी होंगे। और इसके अलावा नाना पाटेकर का उन्होंने जिक्र कर दिया कि आज उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल जी, कुछ ही लोग थे इंडिया में जो बड़े अच्छे कमाल एक्टर थे, उनमें से नाना पाटेकर भी। नाना पाटेकर की क्या मैं बात करूं यार, पॉजिटिविटी थी उनमें, सिंपल सादे आदमी, कोई बनावट नहीं उनमें। उनके डायलॉग इतने हिट, लिटरली बहुत ऐसा दुख हो रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की आर्टिस्ट है। और मैं आपको बताऊं, आर्टिस्ट कहीं का भी हो, वो दिलों में बसते हैं। ये आपने नक्शों में आपने यकीनन मुल्क अलग कर दिए हैं, लेकिन नाना पाटेकर जी कमाल फिल्में देके गए हैं। और खास तौर पे उनकी एक मूवी है गुलाम-ए-मुस्तफा, मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहरहाल आज उनका थोड़ा सा जिक्र ये रहेगा, थोड़ा सा जरा सैड करके भी गए। लेकिन एक बात है, जो दुनिया में आता है उसने जाना भी है, लेकिन जो भी जितनी भी लाइफ उन्होंने गुजारी, बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव लाइफ गुजारी और लोगों से मोहब्बत और प्यार लेकर गए, ये एक अच्छी बात है। वरना होता है ना, जो चले जाते हैं नफरतें फैला के, जो आर्टिस्ट जाते हैं उनके पीठ पीछे भी लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है उनकी। तो बहरहाल जी क्या कह सकते हैं, इसी बात पर ये खूबसूरत ट्रैक। हाय हाय, क्या कहने, मैसेजेस कर रहे हैं क्या, चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 36361 पर।

माला जी का खूबसूरत ये ट्रैक जरा नए स्टाइल से हमसे निगाहें तो मिला। बहरहाल जनाब मैसेजेस करें के चाहे स्पेस टेक्स करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। और जनाब हमें मैसेज कर दिया है इस्लामाबाद से, माह जबीन क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अच्छा जनाब सुंबल भी हमें मैसेज कर रही है, सुंबल जी फरमाइए, कहिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और फैमिली को सबको सलाम दुआ। लगता है बारिश कराची से नाराज हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और अगर टिका के आ जाए तो फिर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और कह रही है मेरी बर्थडे 19 अक्टूबर को आ रही है। अरे एडवांस में हैप्पी बर्थडे। अयाज भाई जिंदगी रही तो आपकी बर्थडे पर जरूर आऊंगी, आप मेरे घर के करीब ही हैं। अच्छा जी, मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। वैसे 6 नवंबर में अभी काफी टाइम है। अच्छा जी, इसके अलावा कह रहे हैं कि अल्लाह आपको हमेशा खुश, बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया चाची फारूक, रानी रानी सिस्ट और बिलावल भाई को मेरी तरफ से सलाम, ढेर सारी दुआएं। चले जनाब वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, सबको याद रखती है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट फेवरेट आरजे, मोस्ट ग्रेट लेजेंड, अरे इतने प्यार से आप बोलती फरीन शहजादी, बहुत शुक्रिया, बेमिसाल आप भी हैं। अच्छा जनाब एंजेलिना, एंजेलिना कह रही है किंग अयाज आपको सलाम, बिलावल नौरीन जरीन और सारे लिसनर्स को सलाम वालेकुम। कोई अरबिक सॉन्ग प्ले कर दें, अरबिक बिल्कुल है मेरे पास। क्यों शीड आज फुल टाइम जाना, रंगीन मिजाज है, कैसा लगा यार? वैसे एक बात है, हमारी मेहनत को जरा बताएं तो सही, कैसे लग रहे हैं, कैसे कैसे गाने ढूंढ के ला रहे हैं भाई। ओए होए। अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम, और जालिम दिल ना दुखाया करो, दुखी मैसेज कर दिया किसी ने, और गुड सॉन्ग। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, नाम नहीं लिखा आपने लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जनाब गयासुद्दीन बलबन मुल्तान से आ गए, गयास भाई की हाल है तुहाडा? पूरी टीम को सलाम दुआ कह दी है, और कहने नाना पाटेकर कमाल एक्टर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं। और उनकी डायलॉग कौन सा था वो यार, वो एक मच्छर साला बंदे को हिजड़ा कर देता, इसी तरह का था, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, एक ही दफा बोलूंगा मैं। अच्छा जनाब इसके अलावा और क्या कहने भी, जबरदस्त सॉन्ग। अच्छा जी गाना पसंद आ गया भाई संजीदा को ये वाला, और इसके अलावा जुमला मैंने बिल्कुल आपने सही कहा, वो कमाल हिट जुमला था वो वाला। और एक और भी बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही, वो खून लेके आ जाते हैं एक हिंदू का और एक मुसलमान का, कहते हैं बताओ उसमें फर्क कहां, इस खून में फर्क बताओ। उन्होंने कहा जब ऊपर वाले ने फर्क नहीं रखा तो हम लोगों ने कैसे रख लिया। क्या खूबसूरत बात है पाटेकर साहब, वाह वाह कमाल थे आप। अच्छा जी अरबी गाने की रिक्वेस्ट लीजिए जनाब, चेक करें

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे 3636 पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। संजू जी, इतनी तारीफें आप कर रही हैं, कह रही हैं आपकी तारीफ सुन के मुझे अच्छा लगा। और जनाब तानिया जी ने भी सुनना शुरू कर दिया। तानिया जी बहुत शुक्रिया आपका भी। अब तानिया जी भी रिक्वेस्ट करना शुरू हो गई ना, है ना, रिक्वेस्ट नहीं है ना। माला का गाना सुना लिया है, लेकिन वो कह रही नहीं माला का एक और गाना भी, क्यों शीट बनी हुई है। माला का एक गाना और है, लेकिन वो जरा दूसरे स्टाइल में, यानी रिमिक्स स्टाइल में, थोड़ी सी देर में। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, गर्मा गर्म चाय लेके आ गए हम। इमरान भाई जो ख्याल रखते हैं ना, क्या कहने। अच्छा जनाब, एंजेलिना कह रही है थैंक्स फॉर सॉन्ग, मोस्ट वेलकम एंजेलिना। अच्छा जनाब, इसके अलावा ओए वालेकुम अस्सलाम, मिस्टर फारूक भी आ गई है। क्या हाल है भाई आपके, ठीक है, खैरियत से हैं। पूरी फैमिली ये जमा हो जाती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली। और इसीलिए कहते हैं ना जरा फैमिली चैनल, तो इसी वजह से प्यार मोहब्बत। लेकिन कभी कभी लड़ाइयां जो हो जाती है ये भी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, ये नहीं होना चाहिए भाई मेरे शो में, तो खासतौर से प्यार मोहब्बत से। लेकिन ये फिर मजा क्या, जब तक लड़ाई ना हो तो मजा क्या। अच्छा भाई, खूबसूरत ट्रैक मैं आपको सुनाने जा रहा हूं।

राइट जी, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और बहुत शुक्रिया इतने सारे मैसेजेस जो है आप लोगों के आगे और इतना प्यार इतनी मोहब्बत उनमें नजर आ रही है। मदिया जी बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआएं देने का और तारीफें बहुत सारी करती है, बस मैं थैंक्स ही कहूंगा आपको। इसके अलावा रमजान पठान कह रहे हैं याज भाई आपको बिलावर संजू और सबको सलाम, शाह फारूक का सॉन्ग प्ले कर देते। रमजान भाई प्लीज रिक्वेस्ट नहीं करें, मतलब मैं सीरियसली आपसे मैंने बात करी, रिक्वेस्ट नहीं करें, क्यू शीट बनी हुई है ना उसको फॉलो करना, आप अपनी मतलब बेइज्जती कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मैं सच बताऊं क्योंकि वो हम पूरी कर ही नहीं पा रहे, क्या करूं मैं। रमजान भाई आपकी आदत है वैसे हर टाइम रिक्वेस्ट, मैं नहीं करूंगा। अच्छा जनाब संजीदा क्या कह रही है, कह रही फैमिली चैनल है तो सब साथ ही है, नोकझोंक भी होती है, बिल्कुल जनाब नोकझोंक तो ठीक है लेकिन जरा बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बाज़ औक़ात लोग जो है ना आपकी जो है ना प्यार मोहब्बत को भी गलत समझ लेते हैं। इंसान बहुत प्यार से मोहब्बत से किसी की बात मानता है लेकिन वो कुछ और ही समझ लेता है, तो मैं इनसे कहूंगा खुश रहे वैसे अपने खर्चे में, ये बंदा कह सकता और कुछ नहीं लेकिन बाहर घर से निकला करें, थोड़ा फ्रेश एयर लिया करें ताकि दिमाग जो है ना वो ज़रा फ्रेश रहे, अच्छी सोच आए। अच्छा जनाब इसके अलावा माशाल्लाह आप साथ रख, बिल्कुल जनाब बड़ी मेहरबानी संजू जी, बहुत शुक्रिया सॉन्ग्स पसंद करने का, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अच्छा जी अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं और शामिल करते हैं किसको, रहने दे भाई

0: やめ。
1: Now, welcome back to the FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कह रहे हैं. बिलावल कह रहे हैं कि रमजान पठान एंजेलिना को सलाम. वालेकुम अस्सलाम. पीर अहमद इलियास भी आ गए. इलियास भाई, आई होप यू आर गुड, ग्रेट शो, स्वीट आरजे. इलियास भाई आज तसव्वुर खानम का पीर भाई. फारसी में मैंने कहा कि रिक्वेस्ट नहीं करनी, क्यू शीट बनी हुई कानों में क्या है, मैल है क्या है, वजह क्या चक्कर है यार, क्यों नहीं मानते यार. एक होती है ना ढीठ पना, ये मुझे कभी कभी नजर आता है आप लोगों को. चुपचाप गाने सुनो, डेडिकेशन कर दो भाई, किसी को डेडिकेट करना, मैं कितने जाऊं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा रमजान भाई को समझाया इतने प्यार से, मोहब्बत से. पीर भाई फिर भी नहीं. तसव्वुर खानम का, फरीदा खानम का, फलाने खानम का, क्यों शीट है ना, इसीलिए बनाई जाती है कि कोई परेशानी ना हो, फरमाइशों से हट जाए. नदीम काजमी भाई हमारे प्यारे से, इनकी मैं जरा देख रहा था, इन्होंने कहा है कि मैंने जब तुम्हें बता दिया था कि मैं सिंगल हूं तो फिर मेरी बेगम से पूछने की क्या जरूरत थी. बहुत ही प्यारी बात, बहुत प्यारी बात नदीम भाई.

0: अच्छा जनाब व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेजेस पहुंच गए हैं और मिस्टर फारूक जो है वो जरा कह रही है कि वाकई यार ग्रेट आर्टिस्ट है नाना पाटेकर। हाँ जी तबीयत अफसोस रहेगा लेकिन हंस मुस्कुरा रही है नदीम भाई की लगता बात पे। कह रहे बता रहा हूँ कि मैं सिंगल हूँ फिर भी बेगम से पूछने की जरूरत क्या है। बहुत प्यारी बात। अच्छा जनाब कह रही है आपकी प्यारी बात से इत्तेफाक करती हूँ ताजा हवा दिमाग को पुरसकून करती है वरना इंसान डिप्रेशन का शिकार। मैं क्या डिप्रेशन क्या मुंह पे आ जाता है डिप्रेशन आप शक्ल देखेंगे तो शीशा से आप खुद डर जाते हैं या अल्लाह ये मेरा क्या हो गया हाल। तो अपने आप को भी बेहतर करें वॉक करें सेहतमंद रहें अच्छे रहें अच्छी सोच काफी सारी गंदगी से बच जाएंगे और गंदगी फिर भी आ रही है तो मैं कहूंगा कि कुर्सी मार का साबुन से नहाएं और दिमाग पे अच्छी तरह फेरें ताकि दिमाग सही रहे साफ सुथरा रहे सोच अच्छी आए। अच्छा जनाब कह रही आपको तंग करने के लिए फरमाइश करते हैं आप गुस्से में अच्छे लगते हैं। अच्छा इतना भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जनाब टाइम क्या है और 5 मिनट की ब्रेक भी नजर आ रही है मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सरदर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है। ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट के एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
5: ये मुफाद-ए-आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: पाकिस्तान टेलीकम
4: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active Yummy Adorable Zabardast Seedha Kare Crush on You Ye pyaar to suno yaar.

0: yummy.
1: Original Center FM 100 क्या बात है यार, एनर्जी आ जाती है इस गाने को सुनके। बूम बूम ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिलावल भाई आप ही को डेडिकेट कर दिया मैंने। बिलावल भाई को जरा फास्ट ट्रैक जो है ना बहुत पसंद है। रमजान पठान कह रहे हैं कोई भी अच्छा सॉन्ग बिलावल संजू इनको डेडिकेट, भाई ये वाला गाना इन सबको डेडिकेट कर दिया मैंने। चलो यार ये एक बात है कि अब जरा टेस्ट भी जो है ना डेवलप हो रहा है, संजू भी इस तरह के गाने जो है ना एंजॉय कर रही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अपडेट करते जा रहे हैं लोग और जो मेरे लिसनर हैं वो जरा इस तरह के होते जा रहे हैं तो मुझे खुशी होती है। उनसे पहले बस मेहंदी हसन से आगे नूर जहां, नो डाउट अच्छे गाने हैं उनके तो उसमें शक की बात ही नहीं है, लेकिन मतलब है कि आज के गाने भी सुने, नए गाने भी सुने, उनको भी इंजॉय करें। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पहले नहीं सुना करते थे लेकिन अब सुनते हैं और फिर जब मुझे उनका रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, इतनी अच्छी प्ले लिस्ट पर भी रिक्वेस्ट, बहुत नाइंसाफी से मैडम, बिल्कुल मिस्टर फारूक बिल्कुल सही कह रही हूँ, बहुत नाइंसाफी है ये। मैं कितने जामा संजू जी को गाने पसंद आ रहे हैं बहुत दिन से शो में, मिशी सिद्दीकी, अरे हाँ यार आपने याद दिलाया, मसरूफ होंगी, लाइफ बड़ी बिजी भाई, हर आदमी बिजी है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने फिर बढ़ते हैं और प्ले करते हैं ये वाला ट्रैक, जरा चेक करें।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: FM247365. FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
3: एक्टिव यमी जबरदस्त. ये प्यार तो सुनो यार.

जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं फिल्म 100 और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर क्या चाय स्पेस टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर। अच्छा जनाब अखियां नु राम दे इस तरह नए अंदाज, हाँ यार ये जरा डिफरेंट अंदाज में एनर्जी के साथ फुल माहौल है भाई। बिलावल भाई कैसा लगा, कोई तबसरा कोई राय? माँ जमीन कह रही नाइस सॉन्ग, माँ जमीन बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब पंजाबी सॉन्ग एंड अरबिक सॉन्ग गुड होते हैं, दिल नहीं तो जुड़ जाइएगा जानी हा हा दिल करता है आपके लिए बहुत कुछ लिखूं प्यार से पर क्या करूं मत मारी गई है कट ढोल, पता क्या लिखा यार बिजी थे आप जी, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी, नाम नहीं लिखते आप इसलिए मजा नहीं आता मैसेज पढ़ने का, नाम जब तक नहीं होगा तो मजा नहीं होगा। एंजेलिना कह रही है बिलावल की अभी शादी नहीं हुई इसलिए फास्ट ट्रैक पसंद करते हैं, शादी का फास्ट ट्रैक से क्या इससे क्या ताल्लुक, समझ नहीं आई मुझे ये बात। अच्छा यार ये गाना बहुत पाकिस्तानी हिट हो गया, अच्छा इस गाने की इंडिया ने भी कॉपी की है पाकिस्तान के, हालांकि सबसे ये पुराना स्ट्राइकी गाना है ये ब्लैक एंड व्हाइट की दौर का, और इस गाने को इंडिया वालों ने जब छापा तो लोग यही समझ रहे कि ये इंडिया का गाना, लेकिन अब जाके पता चला कि नहीं भाई इस गाने को तो छाप दिया है इंडिया वालों, और बड़े दिनों के बाद जाके फिर रोकड़ी साहब नवेद भाई मत करो फोन, पता चल गया आप सुन रहे हैं, नवेद भाई की हाल है तुम्हारा ठीक हो खैरियत से? देखो यार मेरे दोस्त सुनते हैं लाइव फोन कर देते हैं कि मैं फोन अपनी ट्रांसमिशन बंद करके इनकी फोन, नवेद इतना प्यारा तो नहीं है, मुंह धो के भी आता तब भी प्यारा नहीं लगता, तेजाब से धुलाना है तुझे किसी दिन मुंह ताकि सही हो। अच्छा तो मैं बात कर रहा था गाने की, देखो भुला दिया ना तुमने सारी बात, तो मैं बात कर रहा था इस गाने की जो मैं प्ले करने वाला हूँ, तो ये सरायकी एक फोक गीत है, इसको इंडिया वालों ने कामयाबी से छापा और बहुत अरसे तक जो है ये हिट रहा वहां पे, फिर रोकड़ी साहब ने गाया और अब 2026 में दोबारा से इस गाने को जो है यहाँ के लोगों ने गाना शुरू किया और इंडिया में भी पॉपुलर बहुत ज्यादा पॉपुलर, और वो गाना कौन सा चेक करें आप, हाँ जितने सराय की सुन रहे हैं मैं के ताकू डेडिकेट करेंदा पिया सुनो गौर नाल

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: वाह वाह वाह, क्या बात है सराय की भी, फिर क्या खूबसूरत जबान है, सीरियसली मजा आ जाता है। जितना मैसेजेस आप लोगों के पहुंच रहे हैं 3636 पर भी और व्हाट्सएप पर भी, मैसेंजर पर भी। अच्छा बिलावल कह रहे हैं सराय की सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। बिलावल भाई मुझे भी, हमें भी बहुत पसंद है। अब मिस्टर फारूक कह रही है कि क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चले जनाब, समझ आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, वैसे इजी है यार। लो जी, संजू को तो समझ में आ रहा है, सारा समझ में आ रहा है। और कह रहे हैं इंडिया वाले चोरी करने में मास्टर, पाकिस्तानी भी कम नहीं है, ये भी चाप लेते हैं कभी कभी। अच्छा जनाब, और वो उनको थोड़ी थोड़ी जो है ना संजू जी को इस तरह की समझ आ रही है, चलो अच्छी बात है। तानिया जी हमें सुन रही है, तानिया जी कह रही गुस्से, अरे गुस्से में नहीं यार, आज थोड़ा सा तेरा स्टाइल डिफरेंट है। और गुस्सा किस बात का यार, लोग सब इतने प्यारे मोहब्बत करने वाले लोग, ऐसे थोड़ा जानबूझ के जरा मैं गुस्सा दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग इजी ना समझें इस वजह से। ब्यूटीफुल सॉन्ग, कमाल करते हो, हम हो गए हैप्पी, आप तो हो ही कमाल। नाम नहीं लिख रहा, कौन है ये आदमी, कौन है ये? अब तुम बोलोगे गुस्से में नहीं है, ऐसी तरह आज स्टाइल जरा तेज है। पेट्रोल 400 रुपए होने वाला ना इस वजह से भी। अच्छा जनाब, थोड़ा सा माहौल में स्लो एक गाना शामिल करता हूँ और एक गजल खूबसूरत सी। वैसे तो मेहंदी हसन साहब की ये गजल है, लेकिन जरा डिफरेंट स्टाइल में, जरा चेक करें आप।

0: जनाब वेलकम बैक असगर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, इतना प्यार इतनी मोहब्बत देते हैं ना असगर भाई, और सराय की जमान का भी कह रहे हैं, गाने भी इनको पसंद आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और ये गाना तो फिर कमाल, ये तो वैसे ही इतना अच्छा गाना है, और ये खातून ने तो बस एंड कर दिया असगर, पूरी फीलिंग्स का जो डब्बा है ना अलग से डाला इन्होंने, बहुत आला। और संजू जी ने भी तारीफें जो है ना टिका के कर दी इस गाने की, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, और मिस्टर फारूक क्या कहने, गाना तो है ही अच्छा। और सरायकी इनको भी बहुत पसंद आ रही है, वाकई मीठी जमान है। जब ये ज्यादा शुगर होती है सरायकी के, जितने लोग हैं इनको ज्यादा शुगर हुई है, जितने लोग दुनिया से जाते ना जितने सरायकी मेजोरिटी शुगर में, इतनी मीठी जमान है। गयासुद्दीन बलबन को रोशनी डालने, गयास मुल्तान में रहते हैं और सरायकियों के दरमियान रहते हैं, अक्सर इनकी मुलाकात होती है। हर दूसरा आदमी शुगर में होता है, जिसको देखो शुगर, अल्लाह पाक बचाए वैसे। लेकिन यार ये अपनी सेहत का ख्याल भी तो नहीं रख रहा था, इतना मीठा खाते हैं। और इसके अलावा भी रात को भाई सोने से पहले, उठने के बाद, फिर बस जब पूछो खाना, मालपूड़े, पाए, टिकियां, हर वो नाम जो पता नहीं आपने नहीं सुना उधर सुन लिया। एजाज भाई चलो मैं आपको टिक्की खिलाऊं, तो मैंने बोला कौन सी टिक्की, बाद में चलो वो गोश वोश की को बनी तो बड़ी मजे की, हर तरीके का खाना है वहां पे, और ऊपर से सस्ता, सस्ते के चक्कर में खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, फुटबॉल हो गए। रियास मैं आपको नहीं कह रहा, वैसे जनरल बात कर रहा हूं। बहरहाल जनाब छोटी सी ब्रेक मिलते ब्रेक के बाद।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। FM 100, like us on
3: Facebook.com/FM247365.
0: आप सुन रहे हैं, आप है आज अहमद को FM 100 पर। मैसेजेस करें कि HR स्पेस, टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

Point in Afternoon FM 100, four non-blonde sisters. What's up गाने का नाम? जरा different style में आज. बहुत पुराना गाना ये 80s का, नहीं 90s का. जबरदस्त track. अच्छा जी, मिस्टर फारूक कह रही है कि हम गुजराती भी बहुत खाने खाते हैं, मिठाई खासकर. अच्छा जी, बस देखिएगा, शुगर का ख्याल रखिएगा. और संजू कह रही है कि सुना है शुगर मीठे से नहीं, टेंशन से होती है. मीठा और टेंशन आपस में कजन है. हाँ ये बात सही है, लेकिन जब शुगर हो जाती है तो फिर मीठे से मना कर रहे होते हैं, ये है. लेकिन बाकी सही कह रही है, टेंशन जो है ना यही फसाद की जड़ है. और टेंशन से मुझे माँ जमीन ज्यादा की, मेरा मतलब है बीमार रहती है ना, इसलिए टेंशन में मैं आ जाता हूँ. और वो कह रही है कि मेहंदी हसन की आवाज में ज्यादा अच्छा था. और कह रही है कि मेल की जो है ना, मेल तारीफ करता हूँ अच्छा लग रहा है, फीमेल की नहीं यार, ये खातून ने भी अच्छी की, हमें तो अच्छा लग रहा है. फीमेल मर्द की तारीफ करती है, कह रही शर्मिला और मेल, ये कैसे हो सकता यार. मेल के बारे में कितने गलत फहमी है यार, बाज़ औक़ात मुझे लगता है फीमेल से ज्यादा मेल जरा शर्मा रहे होते हैं. आजकल दौर जो है वो जरा क़यामत की निशानी करीब है, और ये देखने में आया है मर्द हज़रात जो है वो शर्माते फिर रहे हैं. लेकिन ख़वातीन जो है अल्लाह उनको खुश रखे, इतना काफी है. ऐसा ना हो कि लोग लड़ने लग जाए मुझसे और मुझे बुरा भला कह रहे हो कि भाई ये कैसा आदमी है. इसी बात पे फरिया परवेज, खूबसूरत से ये ट्रैक.

0: है, क्या कहने, क्या कहने।
1: फरिया परवेज ने बहुत दिनों बाद एक इतना खूबसूरत ट्रैक दे दिया, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, इसलिए मैं क्यू शीट में रख लेता हूँ इस गाने को। और फरिया परवेज वैसी ऑल टाइम मेरी फेवरेट है, बहुत ही खूबसूरत आवाज इनकी। अयाज भाई सराकी लोग बहुत अच्छे होते हैं, किसी को नाराज नहीं करते, बस इसीलिए अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बिल्कुल तबाह सूरत हाल है इन लोगों की। खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिलावल कह रहे सर बड़े भाई ने रात में दो दरिया पर जाने से रोक दिया। हाँ बेटा मत जाओ, सुना चुड़ैले घूम रही हूँ, मत जाओ, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मिस्टर्स फारूक जो है वो खुश हो रही है, कह रही है कि कमाल भाई बहुत जबरदस्त ट्रैक। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, इसीलिए मैं क्यू शीट में रखता हूँ उसको। और इसके अलावा खवातीन के बारे में संजीदा भी कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह रही भाई आज जबरदस्त पॉइंट पर बात करके अच्छा लग रहा है। मुझे तो खुद नहीं पता मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बस मैं जो मुझे सामने नजर आ रहा है मैं बोल रहा हूँ
2: तेरे पीछे।
1: अच्छा जनाब, तानिया जी हमें सुन रही है, और तानिया जी ने क्योंकि माला का गाना पसंद किया था, तो ये माला का एक और ट्रैक है जरा नए स्टाइल से, तो तानिया जी आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ।

हाय हाय हाय, क्या गाना है यार, ये होती क्लास, नए स्टाइल से, नए अंदाज में। अच्छा मैंने एक बात नोट की कि पुराने गानों को जो नए स्टाइल से गाते हैं ना, बहुत ही मजा आ जाता है। तो क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन उस दौर में बनाई गई, और आज भी आप सुने तो आपको बहुत ही अच्छी लगती है। बहरहाल जनाब संजीदा जी बहुत तारीफें करती हैं इस गाने की, और मिस्टर फारूक थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मदिया जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गाना पसंद करने का, और वो भी कह रही है कि क्यू शीट कहां से बनाते हैं, कहां से बनाते हैं, यही मैं ढूंढता हूं। मेहनत होती है जो कि पता नहीं आपको नजर आती है कि नहीं आती है। और इस तरह के ट्रैक्स पुराने हो या नए हो, आपको हमारे शो में जरा कुछ डिफरेंट सुनाई देते हैं, ऐसा है कि नहीं ये बताइएगा। नाइस सॉन्ग और शो भी। अच्छा जी जरी नूर बड़ी मेहरबानी, जरी नूर भी कह रही है कि भाई जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब सारे इतने अच्छे गाने हैं, मैं क्या करूं यार। एक और गाना मुझे याद आ गया, ये गाना भी मैं बार बार प्ले करता हूं। अच्छा इसका ना ये गाना पता नहीं हर बंदे ने नए स्टाइल से बना दिया, ये भी पंजाबी गाना, और आजकल दो तीन दिन से मैं प्ले कर रहा हूं, आज फिर मैं प्ले करता हूं, और वो जरा डिफरेंट स्टाइल में, जरा चेक करें इस गाने को आप।

0: to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक. और भाई इस वाले वर्जन में मजा है, फुल टाइम बहुत ही आला. जब भी इस तरह के गाने सुनते हैं तो एनर्जी आ जाती है, मजा आ जाता है. और मैसेजेस के सिलसिले जारी हैं. इसके अलावा इरफान साहब बहुत शुक्रिया, इतनी तारीफें कर दी आपने सर, बस प्यार है आपका, बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा जनाब मदिया ने भी मैसेज कर दिया है और बहुत खूबसूरत है. और उसके बाद संजू क्या कह रही है, समी मेरी बार हर किसी ने अच्छा गाया ये बात तो आपने, लेकिन यार ये वाला ट्रैक मुझे, ये वाला जो वर्जन है ना, ये बहुत फिट लगा मुझे. हाय हाय. और जनाब मिस्टर फारूक क्या कह रही है, इतनी तारीफें कर देती हैं बस मैं खुश होता रहता हूँ. और कह रही बिल्कुल नजर आती है, क्यू शीट वाली मैंने बात की कि मेहनत नजर आती है, कह रही बिल्कुल नजर आती है आपकी काविश, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, यानी अमेजिंग, बहुत खूब ये गाना भाई समी मेरी बार, बहुत इनको अच्छा लगा. शो की तारीफ करने का बहुत शुक्रिया. रोने का मूड नहीं है, जावे बेदर्दा, गुड सॉन्ग, सलामत रहें. समी मेरी बार में रो क्यों रही हो, दिमाग उल्टा चल रहा तुम्हारा क्या है इसमें, समी बार कर रो रही है और तुम रो रही हो, कौन सी तलवार से बार थोड़ी कर रही हो, क्यों रो रही हो तुम भाई, एजुकेट करना पड़ेगा भाई. यार ये इंग्लिश ट्रैक मुझे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा शामिल करते हैं. हाय गयास, क्या बात है, गाने पसंद आ रहे हैं इनको. गयास ये गाना आपके लिए.

हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त ट्रैक है यार ये। एक मिनट का होता है लेकिन फुल एनर्जी दे देता है। रियाज भाई कह रहे हैं थैंक्स, मोस्ट वेलकम। और जनाब तानिया भी सुन रही हैं अपनी दोस्त अफशा के साथ। अफशा कैसी हो? अफशा वो याद आ जाती मुझे, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। वो वाली भी अफशा मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके सारे गाने अच्छे थे। अच्छा जनाब, और हाय हाय मेरा दिल कहाँ समझ सकती, तुम एक समझ के करना क्या, एंजॉय करो यार। चलो अगर समझने की बात है तो लीजिए जनाब ये गाना, चेक करें आप।

हाय हाय हाय, क्या तारीफें कर दी है बंदे ने कि जरा सी भी मैं बेवफाई करूं तो मर जाऊं। ये होती है बात। बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक। अच्छा जनाब, इसी के साथ ही एक और ट्रैक मैं शामिल करता हूं, लेकिन उससे पहले बिलावल कह रहे हैं सर शानदार शो। चले जनाब, बड़ी मेहरबानी, और गाने अपनी जगह, लेकिन आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। खान भाई बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।

जनाब क्या बात है, इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार आप लोगों के मैसेजेस के थ्रू जो है वो मुझ तक पहुंच रहा है। SMS करने पे मजबूर कर देते हो, कमाल करते हो। हम रुक गए सिर्फ आप। बस जनाब तारीफें करे जा रहे हैं लेकिन नाम नहीं लिख रहे हैं। दरअसल जो भी है खुश रहे भाई। और तानिया जी कह रही है बहुत जबरदस्त सी महफिल सजा देते हैं आप। सच बताऊं तो आप लोगों के बिना ये महफिल सजती ही नहीं। और आप लोग जो बातें करते हैं और फिर उससे जो रिप्लाई आ जाता है इसलिए शो अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया। मैं मतलब इतना प्यार इतनी मोहब्बत देते हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं गुस्सा में भी बोलते हैं। ये ऐसी स्टाइल है अपना, गुस्सा तो हराम है हम पे। इसी बात के बहाने। अच्छा जनाब संजीदा जी बहुत शुक्रिया, इतनी सारी दुआएं, इतना सारा गाना आपको पसंद आ गया है। और कह रही कुछ देर रुक जाओ ये आपके लिए। अल्लाह नहीं मैं शर्मा रहा हूँ, दोनों हाथ मुंह पे रख लिए मैंने। और मिस्टर फारूक बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वह जनाब नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अयाज अहमद को दें इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामान।

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: facebook.com/fm247365
3: 365. 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी साथ तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फॉर्म, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365 no

0: नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस पॉपल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM247365